सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कबहू झूरी है, सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल तो हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत सुरोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान लैके मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधु मेरे नाल मेरा साथ दे रहे हैं।

0: 8500 जी वेलकम
1: जी।
0: हां जी
1: मतलब ए दा लगदा जी बल मतलब जिदा अपना कहंदे हुंदे वी जोर ओनु ओदे बारे ना क्या होवे
0: जोर नु कहा गड्डा खिचणा उथे।

0: idea. Good for your body, mind, and soul.
1: आए आपका स्वागत है हर संसार में और जुड़िए आत्मा परमात्मा अकेले दुनिया और बाहर की दुनिया के साथ।
2: आपको अपने आप की चेक करवानी है आई एग्जाम आई ग्लासेस कॉन्टेक्ट लेंसेज सन ग्लासेस सेफ्टी ग्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज जी हाँ उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-455 स्काइप टीवी पर कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस।
3: राख लिए थे नड़कन

सब अपने को बल जाए, जिन पैज रखी सारे संसार रहा, कर मस्तक धार बालक रख लीनो।

सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, या अली मदद। और आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, लेबर डे वीकेंड है। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं बच्चों को तैयार कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए। पहली बार छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी पहली बार स्कूल जाएंगे, और फिर जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं सभी को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जो बच्चे हैं पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने लिए भी जिंदगी को बेहतर बनाएं और खूबसूरत बनाएं, और अपने ड्रीम्स को पूरा करें, जो भी उनके लाइफ के ड्रीम हो तो उनको खुशियाँ मिले। इसी प्रार्थना के साथ हम प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हैमिल्टन मंदिर में सरस्वती पूजा होने वाली है, तो आप अपने बच्चों को लेकर के जाइएगा। वहाँ पे कथा भी पूरा एक हफ्ता चलने वाली है, तो आप जरूर जाइएगा। अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हैं, अपना टीवी एकदम बढ़िया लेके आना चाहते हो, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के पास आपके लिए बहुत बढ़िया सामान है, और फिर आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया उनके पास आउटडोर आपको फर्नीचर चाहिए, या फिर आपने बहुत बढ़िया सा अपने लिए बारबेक्यू लेके देना है, तो ये सारा सामान आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। तो ये सारा कुछ आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है। एक लोकेशन उनकी इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो आप और जानकारी के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप 799-00-45 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। हैमिल्टन वासियों, की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तां अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ $5,000 तों लै के $1,00,000 तक। ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तों शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। 4 ਟਾਇਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, AM530 ਲਿਸਨਰ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BBT ਰੌਕਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ AM530 ਤੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ BBT ਰੌਕਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-3840 365-384-3840। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, 365-384-3840 365-384-3840 BBT ਰੌਕਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲਸ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਮੇ। ਤੋ ਯੇ ਜੋ BBT ਡੀਲਰ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈਮਿਲਟਨ ਮੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀਆ ਇਨਕੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਏ, ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਡੀਲ ਦੇਂਗੇ। तो हमारे प्रोग्राम को इन्होंने ज्वाइन किया है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स को कॉल कीजिए, HK मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं और आपका सामान हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही ट्रक बुक कर लो 416-524-704 416-524-4704। आपके लिए बहुत ही खुशी खबर है कि लंदन वालों के लिए आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो वहाँ पे खुल चुके हैं गोर रोड पे, और जानकारी के लिए मास्टर कोलिजन डिपो .com पे जाओ, और आपके लिए बढ़िया सर्विस देंगे। नई आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं। मास्टर कोलिजन डिपो वालों का बहुत सालों का तजर्बा है, बड़ा नाम है उनका।
आपके लिए अगर आपने बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ लेनी है, खाना ऑर्डर करना है, तो न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट आपके लिए ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है। और जानकारी के लिए 905-814-1703 पर कॉल करो। 905-814-1730 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो हीर जो है वो बहुत सारे लोगों ने गाई है, जैसे चरखा बहुत सारे लोगों ने गाया है, हीर भी इसी तरह के बहुत सारे लोगों ने गाई है। तो मैं आपको आशा सिंह मस्ताना ने जो लता जी ने गाई है, तो आशा सिंह मस्ताना ने जो हीर गाई है वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल पंजाबी, जैसे रोमांटिक जो रोमांटिक किस्म का जो गाना है, तो किसी का रोमांस सफल नहीं हुआ था, उस जमाने की बात है, इट्स मिथ काइंड ऑफ स्टोरी। तो लेट्स गो टू दिस।

आ रहा होगा। और आप की बढ़िया भैया गीत सुनाऊंगी। तो अब अगर आप अपने घर में बढ़िया फर्नीचर लेके आना चाहते हो, बढ़िया टीवी लेके आना है, लेटेस्ट किचन गैजेट चाहिए, आपने अपने घर में बारबेक्यू लेके आना है, आउटडोर फर्नीचर चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वास में है। और जानकारी के लिए उनकी मंथली वीकली स्पेशल देखने के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करिए 905-799-0045-799-0045। आपने छोटी सी किचनेट सेटअप करवानी है तो वो भी आपको वहीं पे वो सेटअप करके देते हैं। तो ये है आपके लिए जी हाँ टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है, दूसरी लोकेशन गांव में, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, उनकी स्पेशल देखो, फिर अपना ऑर्डर बुक करो 905-799-0045। अब अगर आपने मूविंग करना है तो आपके लिए एचके मूवर्स कनाडा घर में मूव होने में मदद करते हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को। तो अब अगर आपने अपने घर में किसी किस्म की भी आपको आपने किसी किस्म का भी आपको बढ़िया सा आपने अपने घर में किसी किस्म की भी आपको फर्नीचर लेके आना है तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स के पास जाइए। अब अगर आपने कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो आपको बड़ी खुशी की खबर है कि लंदन में खुल चुके हैं वो रोड पे। तो आप और जानकारी के लिए masterkolijandepo.com पर जाइए, फिर उनको आप कॉल कर सकते हो। आप सुन रहे हो प्रोग्राम खर्च सार और मैं हूँ आपकी दोस्त मीरा।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमा डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड तो आधे इन्ने साला दे परोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन से 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स और 3 लोकेशन तो सर्व करते ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्डन रोड इटोबिको वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1150-01621-1165।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सर संसार में। तो लॉन्ग वीकेंड है, आप प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड हैव अ वेरी सेफ लॉन्ग वीकेंड।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। ये जो फोक म्यूजिक है एक कल्चरल चीज है उसमें, तो उसमें हमेशा हमें एक गाए जाते हैं वो ऐसा ही एक अपना एटमोसफियर क्रिएट करने के लिए ये गाने गाए जाते हैं। तो हमारे लिए विदेशों में अपने मुल्क का अपना म्यूजिक सुनते हुए और फिर उस एटमॉस्फेयर में फिर चले जाना, थोड़ी देर के लिए झलक उसकी मिल जाती है हमें। तो हम इन लोगों का जिन्होंने इस तरह के गाने गाए हैं और गाने गा करके हमारे लिए गाने के लिए छोड़ गए हैं, तो उनका जब तक ये धरती आसमान है तब तक हम उनको सुनते रहेंगे, सराहते रहेंगे। क्या ख्याल है, सही है ना? तो अभी मैंने आपके लिए और भी बहुत ही सुंदर सा गाना चुना है, जमला जट, लालचंद जमला जट का। तो ये भी बहुत सारे गीत गाए हैं जमला जट जी ने। सो आपको किस तरह का गीत आपको सुनाया जाए, तो पहले आपको बता दें कि अगर आपने अपने घर में फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक से जाइए। मूविंग होनी है तो आप जा सकते हो। जी हाँ, तो अगर मूव करना है तो इसके मूवर 416-524-704। अब अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है, बेस्ट ट्रक रिपेयर टायर सेंटर 905-625-0055 पर कॉल कर सकते हैं। तो अब आपको अभी उनका गाना ही आपके लिए सुनाऊंगी, तो लेट्स गो विद दिस वेरी ब्यूटीफुल पंजाबी सॉन्ग। आज का प्रोग्राम हमने पंजाबी में ही आपको सुनाना है। तो कृष्ण जन्माष्टमी है, तो अभी पूरा वीकेंड ही लोग जाएंगे, कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ है तो उनको झूला जलाएंगे, बहुत ही प्यारा वातावरण मंदिरों में बना हुआ है। तो कई मंदिर शायद आज मनाएंगे आधी रात को कृष्ण जन्माष्टमी, तो सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आइए सुनिए ये पंजाबी।
1: जंगल दे विच पुआलवा

0: बड़ा साधारण तरीके से उन्होंने गाया है।
1: जिंदगी
0: के
1: नहीं मिलने तेन पलंग नवारी बिस्तर हो नहीं गो बिस्तर हो नहीं गो लटकिया नाम कहीं नहीं गो
0: जी हाँ। तो आया कैसा।

0: लगतिया नाम कई नहीं वो, नाम कई नहीं वो लगतिया नाम कई नहीं।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, तो आपको रमता जी का भी जरूर सुनाएंगे। रमता जी ने बहुत अच्छे अच्छे गाए हैं, ये रमता मीमा बिच वही आपको सुनाऊंगी, पर पहले उससे शमशाद बेगम जी का बहुत ही प्यारा सा गीत मैंने आपके लिए चुना है वो सुनाऊंगी। पर पहले आपको बता दें कि अगर आपने कोलिजन का काम करवाना है, लंदन में रहते हो, आसपास के आपके लिए वो मास्टर कोलिजन रुकू वाले हैं, तो आपकी कार ले जैसा बना देंगे, तो आप mastercollisiondepot.com पर जाइए और उनकी सेवाएं लीजिए। अब आपके लिए ये जो कृष्ण भैया का जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया है इस वीकेंड में, लॉन्ग वीकेंड में, तो आपको सभी को जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और जो नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल जाने वाले हैं वो भी कृष्ण भैया का ही रूप होते हैं, तो उनको हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं स्कूल शुरू करने के लिए, और यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं हम उनको भेजते हैं। Let's go to this beautiful song.

मैं कोशिश करती हूँ दूसरे गीत आपको सुनाने की, क्योंकि ये जो गाने हैं एवरग्रीन सॉन्ग हैं और आपका जो दिल बहलाने वाली बात होती है, ये गाने हमेशा आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपका मनोरंजन करती है। तो कृष्ण जन्माष्टमी जो है, कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इट इज मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, द 8th अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो लॉर्ड कृष्णा वाज बोर्न एट मिडनाइट इन द प्रिजन इन मथुरा टू देवकी, और वहाँ पे बहुत कहानियां बनाई गई हैं। वो मैं सोचती हूँ कि वो लोग बड़े किस्मत वाले हैं इंडिया में, जिनको मथुरा जा करके, वृंदावन जा करके, उनकी जन्मभूमि पर जा करके ये जो त्योहार है वो मनाने का मौका मिलता है, एंजॉय करने का। यहाँ कनाडा में कम नहीं, उन्हें भी कम नहीं, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से सभी मंदिरों में, बड़े मंदिरों को सजाया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल इट सिंबलाइजेस कृष्णा वाज बोर्न टू एंड द टायरनी ऑफ हिज क्रूअल अंकल मामा किंग कंसा। तो ये है कि एज द 8th अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु he descended to earth to restore righteousness, truth and cosmic balance. ये दुनिया को एकदम संभाला उन्होंने आकर के, तो लोगों में शांति सुख की लहर छा गई। तो ये जो भगवान है, किसी भी रूप में, चाहे जीसस के रूप में, किसी भी रूप में जन्म लेते हैं, अपने ये जो जब इंसानियत के ऊपर बहुत अत्याचार होने लगते हैं, तो उनको, लोगों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इस धरती पर आते हैं ये देखा। तो आइए अब आपको एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाती हूँ। जैसे मैंने कहा कि रामता का जो गीत है ना, तो उसका जो पंजाबी का है रामता, तो वो गाना मैं थोड़ा सुनानी है। तो आई एम योर होस्ट मीरा शर्मा और आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर से था। तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको आज पसंद आएंगे, और साथ में आपको ये भी साथ ही हम आपकी सेवा में 10 से 11 बजे हाजिर हो जाएंगे। तो हम आपको बहुत प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया पंजाबी के गीत सुनाएंगे, हिंदी के गीत सुनाएंगे। राम का समय हुआ चाहता है, मैं यही कि आपसे क्यों रात को किसी हाजिर।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

0: वाह जी वाह, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है गाया जिसमें जी द एनआरआई एंथम असी बहुत एंथमा सुनिया सी, एनआरआई दी नहीं सुनी सी। सो अज तो बहुत वधिया सॉन्ग हैगा और एक्चुअल इन्हां ने रियल लाइफ स्ट्रगल दिखाई आ। सो स्ट्रगल तो डरना नहीं है, हर बंदे ने, मैनू लगता है पंकज जी 80% लोगों ने जो इस कंट्री च असी आए हाँ तो असी अपनी लाइफ बेसमेंट्स तो शुरू की आ। सो बेसमेंट साडा पहला घर हुंदा इत्थे, मोस्टली मैं नहीं कहंदी 100% बट 80% लोकां दी लाइफ बेसमेंट तो शुरू हुंदी आ और 80% लोकां दी जॉब भी पैकिंग जॉब या इदां दीआं वेयरहाउस जॉब्स हुंदीआं। सो इस कंट्री ने सानूं बहुत कुछ दित्ता ते बहुत कुछ सिखाया कि कोई काम छोटा या कोई काम वड्डा नहीं हुंदा। सो ओह काम कर करके असीं अज इत्थे तक पहुंचे हां। सो सारिआं ने मेहनत करदे रहना, मेहनत नहीं छड्डनी। हांजी पंकज जी, तुसीं इशारे कर रहे हो, कुछ बोलना चाहुंदे हो?
1: हां जी हां जी, वो मैं आपके ना एक टीचर की क्लास में उतना एक बच्चा
0: ये स्टूडेंट मुझे बहुत तंग करता है। सो पंकज जी दी आवाज आ रही है, पंकज जी दे कुछ प्यारे प्यारे लिसनर्स हैगे, ऑलवेज पंकज जी नूं मिस करदे आ। सो तुसीं सारे दसो पंकज जी दी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही?
1: मेरे जो हिंदी लिसनर्स हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा, सर के स्टाइल में पूछना, मैं पूछता हूँ भाइयों बहनों मेरी आवाज आपकी तरफ पहुंच रही है कि नहीं है, तो करना क्या है जी, आप 905-673-3337 पे आप कॉल करके हमें बताइए मेरी आवाज आपको आ रही है। 905-673-3337 पे कॉल करके जरूर बोलिए। संतोष जी, मैं कुछ ऐड करना चाहता था कि जैसे मैंने काफी सारे इंटरव्यू सुने हैं
0: जी,
1: मैंने काफी सारे इंटरव्यू सुने, जैसे जिसमें जी ने एंथम लिखा है ना
0: जी,
1: तो हर एक का स्ट्रगल मतलब काफी डिफरेंट है और काफी अमेजिंग है
0: जी। बिल्कुल,
1: मतलब किसी किसी के मैं स्टोरी में उनका स्ट्रगल थोड़ा सा रहा है, जैसे एक साल दो साल, किसी का स्ट्रगल चार साल पांच साल रहा है
0: जी,
1: बट छह साल है, बट लेकिन जो जब आप आपकी मंजिल तक पहुंच जाते हो ना
0: जी,
1: तो वो स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं लगता, एक कहानी बन जाती है, एक याद बन जाती है।
0: बिल्कुल,
1: और वो एक इंग्लिश में कहते हैं चेरिशेबल मेमोरी,
0: या
1: वो कहते हैं मतलब सुनहरे अक्षरों में आपके दिमाग में वो छप जाता है, चलो मैंने इतने काम किए, इतनी मेहनत करी, वो करके मैं यहाँ पे पहुंचा, वो जो फिर सुकून जो मिलता है ना वो अलग ही है।
0: बिल्कुल सही है। सो बिल्कुल पंकज जी ने सही बोलिया, और तुसी भी सानू कॉल करके अपना सफर थोड़ा जिहा साडे नाल शेयर जरूर करो
1: जी जी।
0: इस शेयर करन नाल की हुंदा है, कुछ पर्सन्स अजे भी अपनी लाइफ से स्ट्रगल कर रहे हैं और कई बार कई सोचते हैं कि असीं इह केड़ा काम कर रहे हैं, उन्हां दी मोटिवेशन लई जिहड़े भी उस लाइफ दी स्टेज तो निकल के अगे वध चुके आ, मैं चाहवांगी एक बार रेडियो ते कॉल करके तुसीं आपदा सफर साडे नाल जरूर सांझा करो। जिवें मैं इस कंट्री च आई सीगी, पिछों असीं बहुत वधिया जॉब्स करदे आए सीगे, सो जदों नवे नवे आए ते मैनूं टिम होटल्स च जॉब मिली सी, और टिम होटल्स दी जॉब बहुत वधिया सीगी, मैनूं काफी कुछ सिखाया, बट महीने दे विच ही मैं क्लीन बोल्ड हो गई सी क्योंकि मेरे को 30 seconds दे विच उन्हां दीआं ड्रिंक्स नहीं बनदीआं सी, सो मैं बहाना लगा के निकल गई, बट साडे उत्थे दे मैनेजर सारे बहुत नाइस सीगे, बट मेरे को कई बार हुंदा सी बहुत सारिया जॉब्स चेंज करदे आं अंटिल एंड अनलेस सानू पता होवे कि किस चीज ची असीं वधिया कर सकदे आं। तुसीं बिलीव करोगे पंकज जी, फर्स्ट ईयर जदों मैं कंट्री च आई सी कैनेडा च, सो मेरियां 10 T4 बनिया सी, सो तुसीं सोच सकदे हो कि मैं एक साल च किन्नियां जॉब्स चेंज कीतियां इह पता लगाउण वास्ते कि मैं किस चीज लई बनी आ। सो फाइनली जे संतोष एक साल च 10 jobs चेंज कर सकदी है, तुसी भी सोचो तुसी किस चीज लई बने हो और उस चीज वाल अपना टाइम दो, लेकिन यस सरवाइव करने लई यू नीड मनी। सो आप दी जॉब कितों भी शुरू करो, कोई काम छोटा या वड्डा नहीं हुंदा। सो काम वड्डी या छोटे दी गल आई ते हुण खाने दी भुख भी नाल दे नाल लग रही है सानू। सो साडे नाल हैगे तवा किचन तो किरण जी। सो किरण जी ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਤੋਂ। ਕਿਰਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਰਨ ਜੀ
1: ਹੈਲੋ,
0: ਕਿਰਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
2: ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਚਾਹ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਨਰਜੀ ਪੂਰੀ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਲਿਓ। ਹੋਰ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗਾ ਅੱਜ?
1: ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮ ਫਿਰ ਸੇ ਟਰਾਈ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਕਿਰਨ ਜੀ,

0: थैंक यू सो मच एनपी जी, और सारे जन जल्दी से पहुंचो नजारा 30 रेमला ड्राइव पे, उसके उसी प्लाजे में पीछे है जी तवा किचन, और तवा किचन की जो मेन लोकेशन है वो जी है 50 सनीवेल गेट पे। उनका नंबर है जी 9057901699, और सारी पार्टीज बुक करो, केटरिंग बुक करो, आज वीकेंड का पूरा एंजॉय कीजिए जी। सो थैंक यू सो मच एनपी जी।
1: जी शुक्रिया,
2: थैंक यू जी। सो साडे नाल राजन जी क्विक जे मैसेज लेके आया तुहाडे सारेयां लई। सो तुसी राजन जी तुसी आने आ रहो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो सारे श्रोता ने एक बार फिर दस दिए भी जिन्होंने भी अखा का चेकआउट करवाना है, डॉक्टर साढ़े को अज 2 बजे तक अवेलेबल ने। तुसी अपना कंप्लीट कॉम्प्रीहेंसिव आई एग्जाम करा सकते हो, विजन चेक करा सकते हो, अखा की हेल्थ चेक करवा सकते हो। तो नंबर है साडा जी 905-460-8888। एडवांस टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, तो जेडे भी रिजल्ट आते हैं डिजिटली डॉक्टर तुम एक डिस्प्ले स्क्रीन के उत्ते दिखाते हैं, समझाते हैं भी जी अच्छ कोई प्रॉब्लम है तो की प्रॉब्लम है, तो वह की हल है। सो इसे तरह जो बच्चों का एग्जाम कराना, तो बच्चों के एग्जाम वास्ते भी साढ़े को स्पैशल टोपोग्राफी की मशीन लगी है, बहुत ही लाभवंद होंगे जी बच्चों का एग्जाम कराने वास्ते यूज करती है। सो नंबर है साडा एक बार फिर 905-460-8888। तो जे ग्लासेस की गल करिए तो बहुत वधिया डील चल रही ने, खास करके बैक टू स्कूल स्पेशल सेल चल रही है। जिन्हें भी बच्चे आके अपनी ग्लासेस बनवा रहे हैं, अपनी ग्लासेस उत्ते सिर्फ एंटी ग्लेयर कोडिंग बाय करनी है, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन कोडिंग बिल्कुल फ्री दे रहे हैं जी। जिहड़े तुसीं फ्रेम बाय कर रहे हो बहुत भारी भारी डिस्काउंट दिते जा रहे जी, रेवन दे फ्रेम, अरमानी दे, माइक्रोपोज दे, कोच दे, गेज स्पेयर दे, इस सारे दे सारे ब्रांडेड फ्रेम तुहानूं फ्लैट 50% ऑफ दिते जा रहे ने जी। टॉमी हिलफिगर दे फ्रेम, कैलविन क्लाइन दे, फेंडी दे, वैलेंटीनो दे फ्रेम फ्लैट 75% ऑफ है। सब तो वधिया डील तुहानूं लंडन फॉग दे, लिवाइस दे, रेंगलर दे, वैन हिल्सन दे, एडी बावर दे, रूट्स दे, आइजोड दे, इस सारे दे सारे ब्रांडेड फ्रेम फ्लैट 90% ऑफ दिते जा रहे ने जी। $299 का फ्रेम है, 90% ऑफ करके सिर्फ $29 च दिता जा रहा है। तो डिस्प्ले तकरीबन 800 के करीब फ्रेम लगा हुआ जी, जिद लेडीज जेंट्स बच्चों के मेटल वाले, प्लास्टिक वाले, ब्लैक कलर के, कलरफुल हर किस्म का फ्रेम तुम इस फ्रेमा दे विच तुहानू मिल जाएगा, जिहड़ा कि सिर्फ $29 है। सो ये डीलर लैण लई पहुंचो तुसीं स्पेक्स एक्सप्रेस दे उत्ते, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन, पोर्टन एंड स्मिथ कलो या कैनेडी एंड स्मिथ इंटरसेक्शन है जी, वॉलमार्ट वाला प्लाजा। ते नंबर इक वारी फिर 905-460-8888। ते जिहड़े साडे भैण भरा जिन्हां कोल बेनीफिट हैगे ने दस दईए कि मोस्ट इंश्योरेंस कंपनियां नूं डायरेक्ट बिल करदे आ, और स्टोर साडा शाम दे 5 बजे तक खुला है। जे तुसीं अज नहीं आ सकदे ते कॉल करके अपना नाम लिखवा दो, ते इही डीलां तुहानूं असीं नैक्सट वीक भी देंगे। सो नंबर इक वारी फिर जी 905-460-8888, 905-460-8888।
2: थैंक यू सो मच। सारे ने पहुंचना है स्पेक्स एक्सप्रेस और अपनी अखां दा चेकअप करवाना है, बच्चियां नूं स्पेशली लेके जाओ। थैंक यू जी,
1: थैंक यू।
2: सो साडे नाल साडे नेक्स्ट कॉलर हैगे आ जी 47 सुल्तान जी। साडे नाल सुल्तान जी तुसी ऑन एयर हो।
3: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दा मैसेज दे रहे हैं, और स्मार्ट कस्टमर डिसीजन भी क्विक लै रहे हैं जी, क्योंकि 8 सितंबर तो बाद 25% टैरिफ लग्या जी होम अपलायंसिस दे उपर स्टील ते, ते नाल 5% फ्रेट इंक्रीज होया, टोटल 30% का डिफरेंस जड़ा नवियां प्राइस लिस्ट च आया जी, ओ 30% की सेविंग भी हो रही है अज, प्लस बंडल पैकेज दे उपर $2000 सेव भी किया जा रहा। सो एग्जाम्पल दे के चलूंगा मैं, जे तुसी फ्रिज लवोगे $1000 वाला 8 सितंबर तो बाद $1300 का मिलेगा, जे तुसी वाशर एंड ड्रायर लेना $2000 वाला 8 सितंबर तो बाद $2600 का मिलेगा, जे तुसी फ्रिज स्टोव डिशवाशर 3 पीस किचन बंडल लेना एज ऑफ टूडे $5000 तो $2999 का मिल रहा, $2000 तुसी सेव कर रहे हो, जबकि 8 सितंबर तो बाद $3899 का 3 पीस किचन पैकेज मिलना है। सो स्मार्ट डिसीजन ये है कि तुसी राइट वे इस डील नू लॉक कर सकदे जी, 905-450-2828 नंबर है, इन्हां डील्स नू 10% नाल $300-400 दे के लॉक कीता जा सकदा, 905-450-2828। फिर आपां गल करदे हां जी टॉप लोड वाशर एंड ड्रायर दी, जिहड़ी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी च जा रही आ, जिहदे च तुसी एज ऑफ टुडे $600 सेव करना।

0: गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाडला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद कर दिया तुहाडा अज्जा दिन अच्छा गुजरिया होगा। अगले एक घंटे में तुहाडे लई बहुत सारे पैसे बचा के देने हैं, चाहे ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस होण या ग्रैंड फर्नीचर होवे जिथों असीं लाइव ऑन लोकेशन कवर करांगे। स्टूडियो च सुल्तान जी भी आ चुके ने। सुल्तान जी स्वागत है प्रोग्राम च।
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ते देव भाजी एक चीज दसनी बहुत जरूरी है, क्योंकि 8 सितंबर तो टैरिफ जेड़ा होम अपलायंसेस दे उपर स्टील दे उपर 25% लग गया।
0: थैंक यू डोनो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है तुहाडा। हुण 25% लग गया जेड़ा तुहाडे कोल समान आ
1: जी, टोटल प्राइस 30% का डिफरेंस आ रहा।
0: फ्रेट जो समान उधर इधर
1: गैस की वजह तो ना जी।
0: अच्छा 5% हो गया
1: जी,
0: सो 30% सीधी सीधी बचता
1: है। हम 30% की एग्जाम्पल देन लगा मैं, $1,000 का जो फ्रिज सी और वह हो जाना $1,300 का,
0: ठीक है।
1: $2,000 वाली जी वाशर एंड ड्रायर है वह हो जानी $2,600 की, जेड़ा फ्रिज स्टोव डिशवाशर एज ऑफ टुडे आपा दे रहे हैं $5,000 वाला $29.99
0: चे,
1: जिर चे 2000 इस टाइम कस्टमर सेव कर रहे हैं, ये हो जाना $38.99 दा।
0: भाई साहब 30% दी बचत हो रही है, लेकिन हो रही है मंडे तक ही।
1: बिलकुल जी, 8 सितंबर तो पहले पहले
0: जेगा 30% एक्स्ट्रा देना पेगा
1: उन्होंने। नवी प्राइस लिस्ट के हिसाब से साढ़े को चोइस ही कोई नहीं जी।
0: सो हुण चॉइस हैगी तुहाडे कोले, अज चॉइस है, कल नूं चॉइस है, लोंग वीकेंड आ चुका है, लोंग वीकेंड दी चॉइस है। तुसीं ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस ते जाओ, फ्रिज लो, स्टोव लो, बंडल पैकेज लैओ, लॉन्ड्री लो, अपने डिशवाश लो, माइक्रोवेव लो, जिहड़ा भी आइटम उत्थों चखोगे, जिहड़ी भी आइटम चखोगे 30% दी बचत हो रही है।
1: ते फॉर एग्जाम्पल तुसीं लैंदे जी बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वाल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर, बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज, तुसी किचन रेनोवेट कर रहे हो, बिल्ट इन किचन देख रहे हो, एज ऑफ टूडे तुहानू मिल रहा $12,000 वाला $6,900 च, ते जे 8 सितंबर तो बाद लाओगे तो यह पैना तुहानू $8,900 च, ना कि तुसी 40% सेव करना बल्कि 30% एक्स्ट्रा पे करना नवी प्राइस लिस्ट के हिसाब न। सो जेड़ा भी 25% का होम अपलायंसिस के उपर स्टील के उपर इस टैरिफ लग्या इंप्लीमेंट हो रहा 8 सितंबर तो, पर एक साढ़े को ट्रिक हैगा कि तुसी 10% डिपोजिट दवो, $300-$400 डिपोजिट करके डी लॉक कर लो,
0: चाहे दो महीने तीन महीने चार महीने, एग्जैक्टली
1: डिलीवरी डेट सितंबर अक्टूबर नवंबर की जड़ी मर्जी रखो,
0: बिल्कुल
1: टैरिफ सेल ही है जी, टैरिफ तो बचाओ दी सेल।
0: हां टैरिफ तो बचो दी सेल है,
1: टैरिफ तो बचो दी सेल है,
0: ते तुसीं इस सेल दा फायदा चक सकदे हो। अच्छा पहला चलते हैं आपां टेलीविजन वाली लिस्ट वाल।
1: टेलीविजन जेड़े है जी ओदे विच भी देखो तुसी $300-$400 प्राइस इंक्रीज होनी है। 85 इंच की आप गल करिए, 85 इंच सोनी लवांगे तो सोनी ब्रेविया 3 मिलेगा।
0: अच्छा
1: सैमसंग लैणगे कस्टमर तो सैमसंग मिनी LED मिलेगा, 2026 का लेटेस्ट मॉडल है, $2,200 तो अज एज ऑफ टूडे $1,599 का 700 सेव हो गया।
0: हाँ जी
1: 8 सितंबर तो बाद 1,899 का
0: लो। 8 सितंबर किने देखिया, अज जाओ
1: 8 सितंबर मींस बस आही वीकेंड है जी,
0: वाह लॉन्ग वीकेंड है, उस बाद 30% वध जाना सारा कुछ,
1: और ये लॉन्ग वीकेंड जेड़ा ये बैक टू स्कूल वीकेंड है।
0: हाँ जी
1: साडे ऐसी फैमिलीज ऐसे बच्चे जेड़े जा रहे यूनिवर्सिटी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अगर वो जॉइंट अकोमोडेशन देख रहे हैं ते ओथे लिविंग रूम च टीवी चाहिए, 50 इंच सिर्फ $299
0: टेलीविजन, $299 टेलीविजन चक लो, ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस 9054502825।
1: 55 इंच $399
0: 399 55 ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ 55 ਇੰਚ ਜਸਟ ਫੋਰ 399 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ
1: ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ 40 ਇੰਚ 199
0: 40 ਇੰਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 199 ਦਾ 199 ਦਾ 40 ਇੰਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ
1: ਸੋ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 95 ਇੰਚ ਬਿਗ ਸਕਰੀਨ ਟੀ ਵੀ ਲੈਣਾ 85 ਇੰਚ ਲੈਣਾ 98 ਇੰਚ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਗ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਸਪਟੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 98 ਇੰਚ $3500 ਵਾਲਾ 1999 ਦਾ ਅਤੇ 1999 ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਫਰੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਵੇਡ ਐਂਡ ਚੰਕੂਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਡੋਟ ਕੋਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟੀ ਵੀ ਐਪ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟੀ ਵੀ ਏ ਪੀ ਪੀ ਵਨ ਵਰਲਡ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟੀ ਵੀ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਅਕਾਊਂਟ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਅਕਾਊਂਟ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਜਾ ਦਾ ਜੂਸਰ ਵਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਐਂਟਰ ਕਰਾਓ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟੀ ਵੀ ਐਪ ਟਿਕਟੋਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ 905-450-2828 ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 905-450-2828

0: on September 13th at 10 a.m. Join the Brampton Parkinson Canada Superwalk and help make life better for Canadians living with Parkinson's. The walk will start and finish at Susan Fennell Sportsplex in Brampton. With the same strength of spirit people living with Parkinson's demonstrate daily, we will not stop walking until there is a cure. Register or donate at superwalk.ca and make a real difference in the lives of those affected by Parkinson's. Proudly sponsored by CHLO AM 530.
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
2: वेलकम टू रेडियो गोल्ड. आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड शाइन विद सोनम, जहां सिर्फ आपके लिए है सब कुछ, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक नया और रोमांचक अनुभव, जहां होगा म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, न्यूज, टॉक शो और आपका और हमारा साथ. तो सुनते रहें रेडियो गोल्ड शाइन विद सोनम, क्योंकि ये है आपके साथ हमेशा. सुनहरे लम्हे और चमकती दुनिया में आपका स्वागत है, जहाँ हर लम्हा है सोने की तरह कीमती. गोल्डन मोमेंट्स की मिठास रेडियो गोल्ड के साथ.
3: स्वागत है आप सबका रेडियो गोल्ड में, और प्रोग्राम लेके हम हाजिर हुए हैं आज से नया प्रोग्राम आपके लिए. 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा आपका और हमारा साथ साथ साथ. और स्टूडियोज के नंबर हैं 6479569636. सोनम की तरफ से 5 से 6 रेडियो गोल्ड आप सुना करेंगे हर रोज. कोई भी आपने बातचीत करनी है इस प्रोग्राम में, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. हम इसमें बातचीत करेंगे पॉजिटिव थॉट की, जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है उसके बारे में बात होगी, रियल एस्टेट की बात होगी, मॉर्गेज की बात होगी, खाने पीने की बात होगी, और उसके बाद फिर एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो सके. और साथ साथ हमारे साथ स्टूडियोज में रितेश जी हैं. रितेश जी स्वागत है आपका.
4: सत श्री अकाल और आदाब
3: जी. और नासिर जी भी आज स्टूडियोज में पहुंचे हुए हैं. नासिर जी स्वागत है आपका.
5: जी बहुत शुक्रिया सोनम जी. रेडियो प्रोग्राम सुनो नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. और सोनम जी पहले तो आपको भी वेलकम करते हैं,
3: थैंक यू.
5: गोल्ड को वेलकम करते हैं, क्योंकि आप बहुत पुरानी होस्ट हैं और इस चैनल पे आई थिंक पहली दफा होस्ट करने जा रही हैं. और
3: मैंने नासिर जी किया था 2021 में.
5: अच्छा,
3: लेकिन थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए.
5: लेकिन इस चैनल का ये फायदा, बहुत सारे लिसनर हैं जो कि बहुत सारे शौक से प्रोग्राम सुनते हैं, तो हमें ज्यादा खुशी है कि हम उन लोगों में आ गए हैं जो वाकई शौक से रेडियो प्रोग्राम सुनते हैं. और सबसे बड़ी बात है सोनम जी, जिस तरह का नॉलेज, जिस तरह का एक्सपीरियंस आपको है एज ए होस्ट, आपने काम किया है 15-16 साल से काम कर रही है डिफरेंट चैनल्स पे, तो उसका फायदा ये होता है भी आपको बहुत कुछ सीखा हुआ है. हमें अब इंजॉय करना है आपके प्रोग्राम को सुन के. जब भी आप प्रोग्राम करेंगी तो हमें पक्का यकीन है भी आपके प्रोग्राम सुन के हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम बड़े शौक से सुनेंगे. और सबसे बड़ी बात है, अगर आपने कोई गाने की फरमाइश करनी है, आप गाने की फरमाइश भी कर सकते हैं, क्योंकि सोनम जी के पास बहुत सारी वैरायटी है. ये पंजाबी भी बोलती है और हिंदी भी बोलती है.
3: सबसे खूबी जो पंजाबी
5: जो खूबी की बात है इनकी, ज्यादा वो ज्यादा इंजॉय करते हैं हम लोग इनके प्रोग्राम को सुन के, क्योंकि ये दोनों जुबानों में बातें करते हैं, उर्दू भी, हिंदी भी और पंजाबी भी.
3: उर्दू भी आती है
5: जी, उर्दू भी आती है मुझे, पता है ये, पक्का यकीन है मुझे. और ये प्रोग्राम अगर आप सुनेंगे तो आपको श्योर हो जाएगा वाकई कोई प्रोग्राम आ गया आपके इस चैनल पे जो कि आप सुन के इंजॉय करेंगे. और मैं एक बार फिर आपको वेलकम करता हूँ सोनम जी 5:30 AM पे, जो कि आपका रेडियो प्रोग्राम गोल्ड है जी. क्या कहना चाहेंगे आज, और पहले पंजाबी से शुरू करिए फिर.
3: हाँ जी, पंजाबी से गल
4: करते हैं. जी बिल्कुल, करने हैं पंजाबी.
5: जी सोनम जी पहले पंजाबी बोलो.
3: बिल्कुल जी.
5: मैं अपने ना पोतरे दोतरे को कहता हूँ भाई पंजाबी बोलिया करो. हाँ. बड़ी मुश्किल से बोलते हैं अच्छा जी की करना है.
3: अच्छा जी.
5: वो तुसी तो सही बोल दे हो.
4: हाँ, पर कई बार बड़ी स्वीट लगती है.
5: हाँ जी बिल्कुल. हूँ सोनम जी तुसी पंजाबी कैसे बोलोगे.
3: बिल्कुल जी. नासिर जी, रितेश जी, थोड़ा स्वागत है प्रोग्राम दे विच. और बिल्कुल किसे साडे लिसनर्स दा भी स्वागत है. कोई भी प्रोग्राम करना, कोई भी प्रोग्राम तुसी गीत संगीत सुनना चाहते हो या फिर तुसी कोई गलबात करना चाहते हो, तो स्टूडियो से नंबर या फिर मेरा नंबर 4169106000 है.
4: स्टूडियो नंबर ने 4162337368,
3: और प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं। हम फेसबुक लाइव भी हैं, आप फेसबुक पे जाके भी हमें देख भी सकते हैं। कहते हैं कि जस्ट लव योरसेल्फ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योरसेल्फ, टेक द टाइम टुडे टू अप्रिशिएट योरसेल्फ एंड टू लव योरसेल्फ। आई थिंक यू डिजर्व इट। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतनी भागदौड़ में आगे निकल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि खुद को हम काफी पीछे छोड़ आते हैं। तो खुद के साथ समय बिताएं, टू कंप्लीट योरसेल्फ, टू ग्रो योरसेल्फ। हम सब गलतियां करते हैं एंड डोंट पैनिक ना हो, गलतियां हम सब करते हैं। मिस्टेक करने का मतलब है टू ग्रो, खुद के साथ ग्रो करें, खुद के साथ रहें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें और अपने आप को अप्रिशिएट करें, क्योंकि यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। सो लव योरसेल्फ, और प्रोग्राम यूं ही सुनते रहें। 5 से लेकर 6 बजे तक रहेगा आपका और हमारा साथ साथ साथ
5: जी।
3: एक खूबसूरत से गीत की तरफ आपको लेके चलते हैं, फिर उसके बाद खबरों का सिलसिला, रियल एस्टेट न्यूज होंगी, डिस्कशन होगी और मॉर्गेज की बातें होंगी। दो बहुत बड़े प्रोफेशनल्स हमारे साथ हैं, लेकिन बहुत ही प्यारा सा इतना खूबसूरत गीत है, अगर हमारे लिसनर्स भी उसको सुन रहे होंगे। ये आजकल वायरल हो रहा है।
5: अच्छा।
3: टिकटॉक पे बहुत वायरल हो रहा है।
5: क्या बात है।
3: मुझे ये नहीं पता कि सिंगर कौन है, अगर हमारे लिसनर्स को किसी को पता है तो सिंगर के बारे में हमें जरूर बताएं। लेट्स प्ले द सॉन्ग। किसी शायर ने कहा है कि तुम पसंद आ गए।
5: अच्छा।
3: तुम पसंद आ गए, ये बस एक इत्तेफाक था।
5: वाह।
3: पर अब हर पसंद में बस तुम्हें पसंद हो, ये इश्क है।
4: क्या बात है।
3: तुमसे बात करने की वजह ढूंढना, फिर बेवजह तुम्हें याद करना, तुम्हारी एक मुस्कान पर दिल का यूं ठहर जाना, बस ये इश्क है।
5: क्या बात है।
3: Enjoy this beautiful song. Singer, मुझे पता नहीं है। I hope you will like.

0: प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड शाइन विद सोनम. कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग. विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक.
1: मैं रिक्वेस्ट करागा तुसी कॉल करके दसो भी कैसा गाना लग्या तुहानू. ए बड़ी तुसी कह लो बड़ी मेहनत तो बाद है सोनम जी नूं गाना लभिया सी. और अपना अपना एक तो तुसी सिंगर दसो भी कौन सिंगर सी. और सैकेंड ए दसो भी तुहानू कैसा लग्या गाना. और कॉल कर सकदे हो जी कित्थे कर सकदे जी.
2: 416-233-7368 ते दूजा नंबर है.
1: काफी जी.
2: अच्छा चलो ठीक है जी.
1: दोबारा दसो.
2: 416-233-7368.
1: वाह जी वाह. तो तुम कॉल कर सकते हो स्टूडियो और दस सकते हो भी तुहानू कैसा लग्या. और इहदे नाल मैं सोनम जी एक और गल दसदा जावां भी अगर तुम वाकई चाहते हो कोई अच्छा बिजनेस करना और नाल अच्छी मोर्गेज अच्छे रेट से तुम मोर्गेज मिले. मैं पिछले 27 सालों तो मोर्गेज कर रहे हैं लोनस कर रहे हैं और ऑलवेज ऑन एयर कहना भाई घूमो फिरो चैक करो और आखिर से सानू कॉल करो. वह कहने का मकसद की होंगे जदों तक तुम साढ़े को आओगे तुम्हारी तसली होनी चाहिए है लोग की ऑफर करते पे और असी की ऑफर कर जा रहे हैं. साढ़े को बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम तकरीबन ओवर 40 लैंडर्स साढ़े ना काम कर रहे हैं. 40 तो ज़्यादा
3: जी जी.
1: हाँ जी 40 तो ज़्यादा साढ़े ना लैंडर्स काम कर रहे हैं और हर लैंडर की क्वेश्चन की साढ़े ना जुड़िया रहे. साड़ी क्वेश्चन की जो भी ज़्यादा बेनीफिट्स मिल सकते अपने क्लाइंट्स में दवाई जावन. और इन्हें नाल मैं यह कहागा अगर तुम कमर्शियल मोर्गेज लैनी किसी तरह की होटल मोटल गैस स्टेशन प्लाजा लैना या प्लाजे में कोई यूनिट बाय करना है उनके वास्ते सानू कॉल करो. असं बड़ी आसानी ने तुहानू मोर्गेज दवा सकते हैं.
3: बिल्कुल
1: वधिया तो वधिया इंट्रस्ट रेट और वधिया वधिया टर्म्स एंड कंडीशन यह भी दोवें साडी शर्त होंदी है. असं दोवें तुहानू चीज़ों का ध्यान रख के तुहानू दवावांगे क्योंकि साढ़े वास्ते जिहड़ा भी क्लाइंट साढ़े कोल आता है वह साढ़े सिर मत्ते ते हुंदा है. असं कोशिश करने ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਵਾਈਏ. ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਬੁੰਕਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡੇ ਹੈਪੀ ਹੋਵਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਹੈਪੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ.
3: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ.
1: ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-741-9000 647-741-9000 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸੋਨਮ ਜੀ.
3: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ. ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀ ਤਰਫ ਚਲਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਗੀ और उसके बाद कुछ मॉर्गेज के टिप्स होंगे और फिर साथ साथ प्रोग्राम यूं ही चलता रहेगा. हमारे लिसनर्स भी अगर साढ़े लिसनर भी अगर गल करना चाहते हैं सो माय नंबर इज 416-910-6000
4: 416-844-6000 और 416-233-7368 फोन नंबर. सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है. आंखें तो खराब होंगी ही. होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
5: मैं समझ गई. उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
6: शी इज राइट. चाहे बच्चे हो या बड़े वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 Financial Drive, Brampton, 905-457-3232. Clear Optical by Varun Kanda.
7: Ritz Furniture, the message is that.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: अगर आप अपने घर के विंडोज और डोर्स को चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचे मत। कॉल करें यश विंडोज एंड डोर्स एट 416-732-3600। वर्किंग सिंस 2013, मोर देन 5,000 जॉब्स कंप्लीटेड, 16 इंस्टॉलर्स टीम कवर अक्रॉस ओंटारियो, मोर देन 9% इन होम स्टार्स लास्ट मेनी इयर्स। विंडोज एंड डोर मैन्युफैक्चरर नॉट डीलर्स। यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600 और 416-674-7770।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड. फॉर एनी प्रमोशंस टू ग्रो योर बिजनेस, स्पॉन्सरशिप और एनी अदर इन्फॉर्मेशन, कॉल 416-910-6000, 416-910-6000, और यू कैन ईमेल radiogold01@gmail.com. कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग. अगर आपके बाल बहुत जल ड्राई और फ्रिजी हो गए हैं और बहुत गिरने लग गए हैं, उनमें ग्रोथ नहीं हो रही, तो यूज करें फ्रेश हेयर ऑयल. और साथ साथ अगर आपके फेस पे ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, स्किन डल है, एक्ने है, तो यूज करें फ्रेश लुक क्रीम, स्क्रब्स एंड टोनर्स विद एक्सलेंट रिजल्ट्स. और अगर साथ में हील्स में क्रैक पड़ गए हैं, तो सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए कॉल करें जफर मलिक 647-521-5159, 647-521-5159. बुक ऑर्डर एंड गेट फ्री डिलीवरी. वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम. स्वागत है आप सबका. और बिल्कुल चलें हेयर ऑयल. अगर आपको भी खूबसूरत बनना है, अपने बालों को सुंदर बनाना है, तो फ्रेश हेयर ऑयल आपको लेना पड़ेगा. और जफर जी हमारे साथ हैं. जफर जी स्वागत है आपका. हेलो जी. जफर जी स्वागत है आपका. कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ. आप बोलें क्या पूछना चाह रहे हैं
0: जी. बिल्कुल अच्छा.
1: टॉनिक है उसके बारे में कोई बात करनी?
0: हाँ जी हाँ जी. हेयर ऑयल दी गल असी अक्सर करते हैं और बहुत सारे लोगों की अजकल प्रॉब्लम है कि बाल बहुत जल्दी झड़ जाते हैं. आई डोंट नो, एक अजकल डिप्रेशन स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और देयर आर सो मेनी अदर रीजन. ते तुहाडे कोल एक जड़ी बूटी है, एक ऐसा टॉनिक है जेड़ा रीग्रोथ कर सकता है बालों नू, तो प्लीज साडे लिसनर्स नाल शेयर करो.
1: देखो जी, वाल खुश्क हो जांदे ने, सुक जांदे ने, ते तुहाडे पोरिस नहीं रुकदे.
0: हाँ.
1: ओ पानी दी वजह, दवाइयां दी वजह, कलर करन दी वजह या किसी होर वजह तो भी तुहाडे वाल जदो सुक जांदे ने, ते ओ पोरिस नहीं रुकदे, तुहाडे वाल झड़न लग पैंदे ने.
0: ओके.
1: फ्रेश एयर टॉनिक तुहाडे वालां नूं झड़न तो रोकदा ही नहीं, वापस सुगांदा भी है. इक्की वरे हो गए कैनेडा तुसीं बणांदे आ, तुहानूं दिंदे आ, फ्री शिपिंग ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੰਗਾਓ ਕੈਨੇਡਾ ਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ. ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋਕੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ. ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ 70% ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਪੀਟਿਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨੇ.
0: ਓਕੇ.
1: ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਨੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿੱਤਾ ਨਾ. ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਟੋਨਿਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਝੜਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਵਾਪਿਸ ਉਸਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ.
0: ਬਿਲਕੁਲ.
1: ਗੱਲ ਚ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ.
0: बिल्कुल जी. और आजकल इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बाल होन ते चेहरा वैसे खूबसूरत, बाल सुंदर होन ते पर्सनैलिटी थोड़ी चेंज हो जाती है. और बालों नूं खूबसूरत रखने लिए उन्हें ऑयलिंग करनी, स्टीम करनी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. और जो तुहानू अच्छा ऑयल मिल जाए तो बाल ऑटोमेटिकली रीग्रोन ग्रोथ होने शुरू हो जान, तो फिर गल ही की है. 647-521-5159 नंबर है, इस नंबर पर कॉल करो और कॉल करके जरूर इस हेयर ऑयल के बारे इन्फॉर्मेशन लो. तुसी किसी भी कैनेडा के कॉर्नर च बैठे हो, एंड द प्लस पॉइंट इज कि तुहानू फ्री डिलीवरी है. मैंने जफर जी अपने वालों कह दिता, बट इज इट ट्रू?
1: सब लोग रेडियो वाले ने खुद इस्तेमाल किया है, बाद ही मंगवाया है, लोग जाते ने. असी तो शुरू किया एलोपेशिया इलाज किया, लोगों नु सराइसोस होवे, कोई चीज ऐसी होवे, सर दे विच कोई भी प्रॉब्लम आंदी होवे, साडी जिल्द करनी होवे, असी वाल तुहाडे झड़दे होण खुश्की नाल, ते असी उहदा इलाज तुहानू दिंदे आ. पर तुसी साडा सिर्फ फोन नंबर उहनां दिओ, ते बस साडी गल ते पूरी हो गई.
0: 521-5159-647 एरिया कोड है, इस नंबर ते कॉल करके तुसी अपने बालों नु ग्रो करन लई, या फिर मोस्टली विंटर इज कमिंग, इट्स अराउंड द कॉर्नर, बहुत सारे लोगों नु विंटर दे विच ड्राई स्किन हो जाती है, या फिर सम रीजन ब्लैमिशेज फेस ते हो जाते हैं, ते बहुत ही वधिया ब्लैमिशेज रिमूव करन लई क्रीम है जिहड़ी तुसी लै सकदे हो. सेम नंबर ते कॉल करके ब्लैमिशेज लई क्रीम लैनी है, फेस नु क्लीन करन लई क्रीम लैनी है, या फिर हेयर ग्रोथ लई, 647-521 6475215159. जी जफर जी बहुत शुक्रिया.
1: एनीथिंग एल्स? गुड लक जी.
0: थैंक यू जी. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. और चले रितेश जी क्विकली थोड़ी सी बात करते हैं. पंजाबी टू हिंदी, हिंदी टू पंजाबी. थोड़ा सा बताएं प्लीज रियल एस्टेट का.
1: मैं बताऊं?
0: बिल्कुल जी. और कोई भी इन्फॉर्मेशन तुसी लेना चाहते हो 416-844-6000 नंबर है रियल एस्टेट दे रिगार्डिंग 416-844-6000. नासिर जी नाली रियल एस्टेट दी गल हो रही है. सो रियल एस्टेट ता ही सक्सेसफुल हुंदी है अगर मॉर्गेज अप्रूव होएगी. विदाउट रियल मॉर्गेज रियल एस्टेट दी जड़ी वैल्यू है वो जीरो हो जाती है. सो व्हाट डू यू वांट टू
2: से? देखो जी मॉर्गेज वासे बहुत जरूरी है तुसी मैनू कॉल करो 6477419000 ते कॉल करो. 3 मिनट लगेगा, 3 मिनट ही दस देगा तुहाडी मॉर्गेज होनी है नहीं होनी. अगर होनी है तो कित्थों होनी है. वो बेशक कमर्शियल मॉर्गेज है बेशक रेजिडेंशियल मॉर्गेज है, दोवें असीं मॉर्गेज काफ़ी सालों का कर रहे हैं. पिछले 27 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, 27 सालों तो भी ज़्यादा हो गए ना. अगर तुसी लगे रहते हो ना किसी काम में लगे रहते हो कुछ ना कुछ सीखने रोज़ मिलता है. असी वही गल की है, रोज़ असी सीख के कोशिश करने भी जो भी ज़्यादा ज़्यादा बेनीफिट्स अपने क्लाइंट मिल सकते हैं असी दवाने की कोशिश करने. कोई भी तुसी कमर्शियल मॉर्गेज लैनी है, होटल मोटल गैस स्टेशन प्लाजा लैना है या प्लाजे विच कोई यूनिट बाय करना है, उन्दे वास्ते कॉल करो 6477419000 ते कॉल कर सकते हो. और अगर एक लेडीज वास्ते लोन आया 50,000 तो लैके 1,00,000 तक, अगर मावां धियां भैणां वास्ते खुशखबरी, तुसी चाहते हो घरों बह के काम करना किसी तरह का, तुसी केटरिंग का कम कर लो, तुसी ज्वेलरी

मून स्टार्स, यहाँ हम करेंगे सितारों की भाषा को समझने की कोशिश, क्योंकि आसमान में चमकते सितारे सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, वो अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए हैं। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों के संकेत, ज्योतिष साइंस के गहरे रहस्य और उनके हमारे जीवन, करियर, सोच, रिश्तों, फैसलों और भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव। तो आइए ब्रह्मांड की इस अद्भुत यात्रा पर साथ चलते हैं, क्योंकि कभी कभी जवाब जमीन पर नहीं सितारों में छुपे होते हैं, और हर सितारा एक कहानी कहता है, और शायद उनमें से एक कहानी आपकी भी हो। तो चलें सितारों से जुड़िए और खुद को समझिए। ज्योतिष क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, यही एक ऐसी विद्या है जो बताती है कि जीवन में जो हुआ, जो हो रहा है या जो होगा वो निश्चित है। इसलिए अगर आप दुखी हो तो अज्ञानता से दुखी हो, सुखी हो तो वो तय हो चुका है, ये ज्योतिष ही बता सकती है। लेकिन कई हजारों में कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिन्हें इसका सही ज्ञान है, लेकिन बताने वाले लोग बहुत हैं। ज्यादातर लोग अनाड़ी हैं ज्योतिष की विद्या को लेकर। ज्योतिष के इतने पार्ट हैं तो कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। जो भी ज्योतिष की आगे ब्रांचेस हैं या पार्ट हैं वो ऐसे हैं कि जैसे खांसी आए तो अदरक शहद खाकर ठीक हो जाओ। इसलिए जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स की ब्रांचेस हैं उसमें खांसी तो ठीक हो जाती है, लेकिन अगर निमोनिया हो जाए, टीवी हो जाए या कोई भयंकर बीमारी हो जाए तो अदरक शहद के ड्रम में भी खांसी नहीं रुकेगी। तब क्या होगा, तब स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो डीप में जाकर बीमारी का इलाज ढूंढेगा। ऐसे ही जब लाइफ में प्रॉब्लम्स हों, समझ ना आए, चारों तरफ ब्लैकआउट हो जाए, तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कैलकुलेशंस करके साइंटिफिकली गहराई में जाकर आपको एस्ट्रोलॉजी और हस्त रेखा के जरिए सब कुछ बता सकता है। सबसे मुश्किल पामिस्ट्री है। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, आपकी जिंदगी इसके जरिए जानी जा सकती है, इसमें कोई तुक्का नहीं लगता। ये प्लैनेट्स, ज़ोडियक साइंस और नक्षत्रास की कैलकुलेशन है। तो सही स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकता है कि आपके आने वाले टाइम में, जिंदगी में या फिर आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और अगर आपका भाग्य अच्छा है, आपके प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी है, तो ही आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढ सकते हो या फिर एस्ट्रोलॉजर आपको ढूंढ लेगा। तो अगर आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए तो वो डॉक्टर्स या लॉयर की तरह आपकी जिंदगी में काम करता है। तो आने वाले टाइम में इसके बारे में और नॉलेज आपके साथ शेयर होती रहेगी। सुनते रहें रेडियो गोल्ड।

0: फैक्ट जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये मैच्योर जो करेक्शन है वो मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, तो ऑलमोस्ट इट इज एंडिंग, द करेक्शन इज एंडिंग, तो प्राइस जो है वो बैलेंस है। तो प्राइस बैलेंस होने का मतलब ये है अब ये बढ़ने शुरू होंगे, लेकिन अभी नहीं, इस साल के एंड के बाद।
1: अच्छा,
0: क्योंकि इन्वेंट्री अभी पड़ी है, 4.5 महीने की इन्वेंट्री है अपने पास, ये थोड़ी और कम होगी, जैसे ही थोड़ी और कम होगी 3 महीने तक इन्वेंट्री आएगी, तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो एक ही घर पे दो दो बायर्स होंगे, तो प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे।
1: तो इस इनका मतलब है 3-4 महीने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ
0: ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ।
1: ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ,
0: 416-844-6000।
1: अच्छा जी, क्या बात है सोनम जी। हूँ तुम की कहना चाहोगे रियल एस्टेट के बारे में?
2: बिल्कुल जी, रितेश जी ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, एंड वी शेयर द न्यूज़ एज वेल। तो अगर हमारे लिसनर्स कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नंबर 416-910-6000 या रितेश जी का नंबर है 844-6000। और हाँ जी नासिर जी, क्या कहना चाहेंगे
1: जी? मैं उन्हें दसना चाहूँगा, डॉक्टर साहब आए ना, वो डॉक्टर साहब होम्योपैथिक गोल्ड मेडलिस्ट ने, कनेडियन गोल्ड मेडलिस्ट। उन्होंने कहा जी किसी तरह की तकलीफ है साडे को, एक बार लाजमी पुछो, अभी तुम्हें दसागे किमें तुहाड़ा इलाज हो सकता है किसी तरह का। देखो अजकल इतने ना तुम्हें पता है ड्रिंक बड़े लोग करते हैं, उन्होंने फैटी लीवर हो जाता है, वो कहते अगर तुम ड्रिंक बहुत ही करते हो तो फैटी लीवर हो गया, सानू कॉल करो। अगर तुम्हें पेशाब बहुत आता है, बार बार आता है, वह भी सानू कॉल करो, क्योंकि 50 तो बाद प्रॉब्लम शुरू होती है, बहुत सारे लोगों को रात 3-3, 4-4 भी उठना पैंता, वो कहते सानू कॉल करो। बच्चों की ग्रो नहीं प्रॉपर हो रही, बच्चे की एज हिसाब न उन्हों का कद छोटा रह गया, वो कहते सानू कॉल करो। वह बहुत सारिया चीज़ें ने, और सब तो वधिया गल असीं भी बचपन तो यही सुनते आ रहे हैं, होमो होम्योपैथिक का कोई सैड इफैक्ट नहीं है। अगर तुम चाहते हो वाकई प्रॉपर इलाज हो, सैड इफैक्ट भी ना हो, तो डॉक्टर अबरार हुसैन उन्होंने नाँ है, और पिछले कई सालों तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इतने कनेडियन गोल्ड मेडलिस्ट है, और बड़ी कामयाब इन्होंने, बहुत सारे लोग उन्होंने को आते हैं। नंबर बड़ा सौखा जहाँ उन्होंने 6475535300 ते कॉल कर सकते हो, 5535300 ते कॉल करके जानकारी ले सकते हो। उन्हें नाल नाल मैं तुहानू एक बार फिर दसदा जाऊंगा, ओपन माइक कैफे एंड कुजीन दा मैसेज, अगर तुसी चाहते हो वाकई चंगा टेस्ट मिले, लाहौरी टेस्ट मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग पार्टियां करते हैं फ्राइडे सैटरडे नाइट फ्राइडे नाइट, उन्हें डेली पार्टी, तुसी उबर ते भी ऑर्डर कर सकते हो, तुसी फोन करके भी ऑर्डर कर सकते हो। नंबर बड़ा सौखा जिहा है, और टेस्ट की वह गरंटी है देंदे पे, कहिंदे मज़ा नहीं आएगा तो पैसे नहीं लवागे। कढ़ाई खानी है तुसी, गोट कढ़ाई, चिकन कढ़ाई तुसी खानी है, और वाकई लाहौरी कहिंदे हो कढ़ाई खानी है, तो तुसी एक वारी लाजमी कॉल करो। और इहदे नाल नाल तुसी चाहते हो भी कबाब, सी कबाब, थाई लेग ओवन, चिकन
2: दी, सॉरी मैं तुहानू विच रोक रही हां, व्हाई डोंट वी डू दैट फ्रॉम नेक्स्ट वीक, कुछ तुसी साडे लिसनर्स नु थोड़ा जा कूपन सी दो।
0: आई नो,
1: अच्छा फिर इस तरह
2: नेक्स्ट वीक तो है,
0: लॉन्ग वीक, लॉन्ग वीकेंड भी है,
1: लॉन्ग वीकेंड। देखो असि ब्रेकफास्ट भी तुम दसदा जाओ, ब्रेकफास्ट भी दे रहे हैं, और ब्रेकफास्ट सुबह 10 तो लेके,
2: नहीं नहीं, जिहड़े रेडियो गोल्ड सुनेंगे उन्होंने स्पेशल ऑफर मिलनी चाहिए।
1: चलो जरा ये प्रोग्राम का हवाला देवे सोनम जी के नाम लेके, उन्होंने असि 15% डिस्काउंट देवे,
0: क्या
1: बात है, और की चाहिए, कोई रेडियो गोल्ड का नाम लवो, सोनम जी का नाम लवो, तो 15% डिस्काउंट मिलेगा। नंबर बड़ा सौखा जे, 416-526-6800 से कॉल करके जानकारी लै सकते हो, 5246-6800 फोन करके जानकारी ले सकते हो। और टेस्ट लाहौरी टेस्ट, हलीम खानी है, लाहौरी चने खाने ने, तो तुसी कॉल जरूर करो। और इन्दे नाल नाल एक बहुत वड्डा कॉल आ रहा पाकिस्तान तो, शेर मियादाद, उनके शोवों की बुकिंग अगर तुसी करवानी है वह भी तुसी कॉल कर सकते हो। और शोवों की बुकिंग वास्ते नंबर तुसी नोट कर लो, 6477419000 कॉल कर सकते हो। शेर मियाँ दाद तुसी पाओगे, यह नुसरत फतेह अली खान साहब का नैफ्यू है, और बहुत वड्डा नाम है, तुसी कोई भी उन्होंने नाम पा के शेर मियाँ दाद की यूट्यूब से क्वाली सुनोगे, तुहानू मज़ा आ जाएगा। 6477419000 जी सोनम जी।
2: जी बहुत शुक्रिया नासिर जी और रितेश जी, थैंक यू सो मच कमिंग टू द स्टूडियो। और प्रोग्राम दी ये हलचल चलती रहेगी एवरी सैटरडे, यू कैन लिसन 5 to 6 एवरी सैटरडे रेडियो गोल्ड, और सोशल मीडिया के किसी भी अकाउंट से जाके तुसी रेडियो गोल्ड नू सर्च कर सकते हो। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रियल एस्टेट, रिगार्डिंग वास्तु, रिगार्डिंग नेगेटिव एनर्जी नू किदा रिमूव करना है, और रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इंजॉय करो अपना लॉन्ग वीकेंड, ब्यूटिफुल लॉन्ग वीकेंड, लास्ट लॉन्ग वीकेंड ऑफ समर, राइट? And then we are moving towards the fall, and then winter is just knocking the door.
0: That's right.
2: So enjoy.
0: But don't drink and drive.
2: Don't drink and drive. Hamesha, yes. Always just keep in mind. Apne liye driver ko arrange karo all the time. एंड बट डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. और हमें यहीं पे इजाज़त दें इस खूबसूरत सी कवाली के साथ, आपको छोड़े जा रहे हैं. नेक्स्ट सैटरडे आपके लिए हम प्रोग्राम लेके हाजिर होंगे. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और ज़िंदगी जैसी भी हो, बस ज़िंदगी है. ज़िंदगी ने ज़िंदगी भर गम दिए, लेकिन जितने भी दिए कम दिए.
1: खूबसूरत शेर याद आ गया जी.
2: हाँ जी.
1: क्या एक सागर सी बड़ा वड़ा जरा कह लो शायर है पाकिस्तान का, कहंदा है ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, ना जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं.
2: क्या बात, बहुत मजा आ गया. बिल्कुल जी, बिल्कुल है ना. तो सब जिसनों भी पूछो सब सब दे आंसर यही होंगे जिंदगी नु लेके. बट स्टिल जिंदगी जैसी भी है, चाहे गम है, दुख है, तकलीफा ने, बट इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ.
1: बिल्कुल, और तुसे उनु एंजॉय करो. असी लोग है कहने असी एक बारी आना दुनिया ते दोबारा नहीं आना, लेकिन अगर आ गया तो एंजॉय करो बजाय तुसी हेडेक लैन दे. और इजी हो जाओ, लाइफ नु थोड़ा इजी कर लो. एक साल शायद तुहानू होर एफर्ट करनी पेगी, एक साल बाद सारी चीजां वापस आवांगी, क्योंकि बहुत सारे लोग गिव अप कर बैठे ना.

0: आज मरे अपने।
1: सांझा नूं जिवें परिंदे अपने घर मुड़ आउंदे ने,
2: शिफ्टां ते जद वतना तो दूर याद अपने फेर तो आउंदे ने।
1: कोई है जो करदा है तुहाडी मां बोली विच तुहाडे दिल दीआं गल्लां,
2: पंजाबी गीतां नाल रौनकां लगा के तुहाडे कम दीआं गल्लां,
1: वखरा ढंग वखरा रंग,
2: रेडियो जीदा वखरा अंदाज,
3: जीदा वखरा अंदाज।
1: सो चज्जी जीवन शैली दी गल करता तुहाडा अपना रेडियो, रेडियो अंदाज,
3: रेडियो अंदाज।
1: सुनो अपनी होस्ट परम कौर दिना,
3: परम कौर दिना।
1: नंबर टू कॉल 647-234-6000।

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दिनाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग 6:02 हो गया जी रेडियो अंदाज लैके मैं थोड़ी होस्ट परम हाजिर हो चुकी हाँ मेरे वालों सारे सारे लिसनर्स नो सारे परिवारों बड़े अदब सत्कार दिनाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी एंड खुश आमदीद एंड स्वागतम

को मन लाचिए भाई। गैस प्राइसेस कितने पहुंच गया। घूमण कितने कोई जा सकता, पर जा सकते हो नेड़े तेड़े कितने जा सकते हो, कोई ट्रेल कितने। जरूरी नहीं होंगे कि बहुत लॉन्ग ड्राइव पर जाना, तो बहुता ही तेल फूकना। कितने बजट फ्रेंडली भी बहुत सारिया थावं होंदिया, साढ़े आस पास ही बड़ी जगह होंगे बई। कई बार होंगे कि कोई ट्रेल आ जिद तो सू पता ही नहीं होंगे, सू दो चार चार साल हो जाते उस उत्थे रेंदे हुए उस नेबरहुड के या उस घर के सू लागे ही नहीं पता होंगे भी लागे कि चीज़ा है जिड़िया फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट कर सकते हो, तो चंगा टाइम नेचर के जे गुजारना है तो गुजार सकते हो। सो आसे पास जरूर सर्च कर लैनी, अजकल तो सू बड़ा ईजी हो गया, फोन सानू सारा कुछ दस देता है कि थोड़े घर के आस पास की हो रहा। सो जरूर घूमन चले जाना क्योंकि समर का है लास्ट लॉन्ग वीकेंड आ। सुनेहा दसी जी देसी फ्लाइट मैनिया का, अगर तुम खाण पीन के शौकीन है कि हो तो वैसे भी खाना पीना साड़ी नेसेसिटी आ, तिना चीज़ों के एक चीज़ है रोटी। सो जो भी थोड़ा मन करे कि तुम कुछ बाहरों खाना घर नहीं बनाना, तो फिर देसी फ्लाइट मैनिया तो एक चक्कर जरूर लगा के आना। 6171 मेफील्ड रोड यूनिट नंबर 96 ब्रैम्पटन के लोकेटर ने। तो अगर तुम इतने जाना तो थानू वैज तो नॉन वैज के बहुत सारिया ऑप्शनस मिलनी। सो इतने तो स्ट्रीट फूड टाइप भी सारिया चीज़ा मिल जाएँ, नूडल बर्गर खाना या रैप्स तुम ट्राई करने, मोमोज ट्राई करने, या फिर तुम जी इंडिया वाली टिक्की ट्राई करनी, या कुछ होर ऐसा चटपटा खाना, तो वह भी थोड़ा सारा कुछ इतों मिलना जी। तो बाकी गल कर लिए ओथेंटिक इंडियन खाना खाना, कोई केटरिंग इवेंट आ रहा तुम केटरिंग करवाना चाहते हो, तो केटरिंग के नवी नवी आइटम्स होे जे गैसट है वह हैरान रह जा भी सिर्फ कल नान तो रोटी नहीं बाकी बहुत सारा कुछ सगा जो असी केटरिंग देसी फ्राइड मैनिया तो करवाई। 6171 मेफील्ड रोड यूनिट नंबर 96 ब्रैम्पटन के लोकेटर ने। पहुँचना देसी फ्राइड मैनिया के, यह एयरपोर्ट एंड मेफील्ड के मेन इंटरसैक्शन ने। जो तो भी कुछ खाना खाण का मन हो जरूर जाना, नाल काफ़ी सारे इन्हों को ड्रिंक्स के चॉइसिस ने, मिल्क शेक पीना, मैंगो लस्सी पीनी आ, मैंगो शेक पीना, इदा दिया बहुत सारिया चॉइसिस है, जो भी थानू चंगा लगे मन वो चूज़ कर सकते हो। केटरिंग करवानी है तो फोन नंबर है जी 647-534-3475 3475 ते कॉल की जा सकती है। देसी फ्राइड मैनिया 647-534-3475 ते कॉल कर लियो जी। तो अगर तुम अपने घर में पेंट करवाना है रफ्तार

0: ओंकार गुंडा सिंह रिपोर्टिंग सर।
1: सत श्रीकाल गंडा सिंह जी,
0: की हाल चाल है?
1: मैं बिल्कुल ठीक हां, तुसी सुनाओ।
0: बाजी आपा भी कायम हां।
1: और फिर आज किद्दां, की गल सुनाण आए हो?
0: देखो ये गल्लां हैं जेड़ियां मर्जी सर तानू तंगी है।
1: ओहो आज फेस स्टैंड ते
0: बस थोड़ा और हो जा परे तार नंगी है।
1: तुसी ये गल कित्थों सुन ली?
0: ए मन्नू ओ मुंडे ने सुनाई जेड़ा तेरे नाल हुंदा सी किड़ा
1: गुरप्रीत।
0: ओ कहंदा भाई इहनू एदां क्यों? मैं कहदा
1: अच्छा मतलब ओदियां गल्लां मन्नोगे हुण तुसी?
0: ओ गल पता की मुंडा बीबा तू ऐ बदनाम ना कर।
1: अच्छा
0: मैनू ओदी गल सुन के ना याद आ गया चुटकला।
1: केड़ा चुटकला?
0: चुटकला बा डॉक्टर तो मैनू याद आ गया भी ओना मरीज क्या डॉक्टर को।
1: अच्छा
0: कहंदा डॉक्टर साहब मेरा ना पेट खराब है।
1: ओहो फिर
0: कहंदा की गल कुछ खा लिया गल? कहंदा जी खादा ना कुछ नी, बस जाके कलसी दा पी के तू चाह पीती गई है।
1: जेड़ा सोने दा रेट आ।
2: सोने दा रेट या?
1: हां जी
2: सोने दा रेट रूट तक किथे रह गया हुण?
1: मतलब सोना इन्ना महंगा हो गया, इन्ना महंगा हो गया भी आ व्याहां दे विच गहने किथों बनाउणे आ?
2: मैं गहने कदे बनाउणे? गहने मैं तो उही तां कही जांदा
1: की
2: मैं कहा भी आ भला होवे जिन्ना बनाए आ। की बनाए उन्होंने?
1: की बनाए
2: आ? जिहड़े जाली बनाउंदे आ
1: आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अच्छा जी
2: ओने दा बचा ते साडे आले।
1: अच्छा
2: 1400-1500 दा सूट जा लैके खेड़ा जड़ाओ
1: तुसी नकली बनवाया
2: ते होर की करिए दसो
1: असली क्यों नहीं?
2: असली मैं हद कर दी तू किदा नी?
1: की हो गया?
2: चार मेरे साले।
1: अच्छा
2: पहला जो ब्याह किया बड़े साले का ओदो सस मेरी ने पलनी वालियां बना दी।
1: अच्छा जी
2: ओदो बाद जो निके का किया फिर चीनी बना दी। ओदो निके का किया बापू का कड़ा भी जाना लगा।
1: अच्छा
2: ये मेरी अक्सी छाप हूं कहते निके ना बना दी।
1: नहीं देखो
2: मेरे निके भाई दे फायदा की होया दसो मैं?
1: ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਲਾਓ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ।